0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा गाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई।

जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से

0: गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन 0 होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: क्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट UG का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़, राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक, दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
7: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10-coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. The hydrogen facility has been established at Jind to enable safe, efficient and reliable hydrogen-powered rail operations. Anand Kumar, Akashvani News, Jind.
6: From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:45 p.m. he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 4,700 crore rupees. He will also address the gathering on the occasion. Subsequently, Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improve passenger convenience and accelerate economic development in the region.
8: Prime Minister will inaugurate 74 redeveloped railway stations across 20 states virtually from Jalandhar, including SAS Nagar Mohali Railway Station, Shri Muktsar Sahib Railway Station and Shri Anandpur Sahib Railway Station. After personally inaugurating the Jalandhar Kent Station, these stations have been transformed under one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme. He will also flag off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Kent Railway Station. It is a first direct twice-a-week train connecting two of India's most revered spiritual and cultural centers, Amritsar and Varanasi. Sir Govardhanpur in Varanasi is the birthplace of Guru Ravidas Ji. Prime Minister will also inaugurate the Daulatpur Chowk Kartoli new rail line as part of the Nangal Dam Talwara Mukeria new rail line project and flag off the Kartoli Ambala train service. It will significantly strengthen rail connectivity between Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
6: The Prime Minister said that he is looking forward to being among the people of Haryana, Chandigarh and Punjab to participate in various programs linked to railways, healthcare, culture, connectivity, education and more. In a social media post, Mr. Modi said that these works will have a very positive impact on the lives of people, especially the Yuva Shakti of the country. The Delhi government has approved the Delhi Startup and Incubation Policy with the aim of giving a fresh push to innovation, research and entrepreneurship in the national capital. Under this policy, more than 400 crore rupees will be invested over the next 5 years. Our correspondent has the details.
4: The policy in its initial phase will be implemented in 11 state universities, 13 government-aided colleges, polytechnic institutions, industrial training institutes and government schools. The government will provide one-time financial assistance to eligible institutions for setting up and strengthening incubation centers. As part of the initiative, the government will also organize an annual Delhi Startup Youth Festival. It will bring together young innovators, educational educational institutions, startups, investors, industry representatives, and policy makers on a common platform to showcase new ideas, build partnerships, and inspire entrepreneurship among the youth. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said, "The policy is designed to develop Delhi into one of the country's leading hubs for innovation and entrepreneurship while ensuring that young people receive every possible support to turn their ideas into successful startups." With Dipendra Kumar, Saklain Akhtar, Akashwani News, Delhi.
6: Union Home Minister Amit Shah will be on a three-day visit to West Bengal beginning today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on border security, governance, law and order and development. Tomorrow, Mr. Shah will visit Jumagadh border outpost in Siliguri and interact with border security force personnel at the 18th Battalion border outpost. He will also inaugurate and lay the foundation stone for various development projects related to the BSF. Prime Minister Narendra Modi held a conversation with the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, and conveyed his condolences on the passing of the father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. In a social media post, Mr. Modi said that the father Amir of Qatar's enduring legacy will continue to guide the two countries as they further strengthen their strategic partnership. He also recalled father Amir's deep affection for India, his warmth towards the Indian community in Qatar, and his steadfast commitment to the India-Qatar relations. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The National Testing Agency has declared results of NEET UG 2026 re-examination. Over 11 lakh candidates have qualified for admission to undergraduate medical, dental, Ayush and allied programs. Scorecards of all candidates are available on the official website neet.nta.nic.in. The NTA said that the result has been declared in time so that the medical admission and counselling calendar for candidates stays on track. A total of close to 20 lakh candidates appeared for re-exam this year at 5,440 centres in 551 cities in India and 14 cities abroad. Gujarat Anti-Terrorist Squad ATS has arrested 5 persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Adib Bhai Shera, Muhammad Ayub Kariwala, Muhammad Palanpur alias Khali Ayub Sansara, Shafia Rais Mukhti and Muhammad Hassan Kardia. They were apprehended from Kadiyal village in Sidhpur Talika of Patan district. The officials said the 5 accused were held after their names surfaced during the investigation of 8 alleged Jaish-e-Mohammed operatives held earlier this month. The 5 were produced before Judicial Magistrate R.M. Bhatia at Kadi Town in Mehsana district, which remanded them in ATS custody till July 24th. Goa government has tightened regulations governing casino operations by prohibiting entry of persons below 21 years of age into casino gaming areas. The Home Department has issued a notification enforcing the new restriction. The notification also introduces stricter provisions regarding the payment of license fees for offshore casino vessels. Operators who fail to pay the annual license fee within the prescribed time will be liable to pay an 18% penalty. U.S. forces launched a fresh wave of military strikes against Iran last night, marking the 6th consecutive night of operations against the Islamic Republic following the collapse of peace deal between the both sides. According to the U.S. Central Command, the attack was aimed at further degrading Iran's military capabilities as Tehran poses a threat to commercial vessels transiting through the Strait of Hormuz, which Washington claims. Meanwhile, Iranian state media reported that 3 people were killed and several others got injured after the US targeted civilian infrastructure in their recent wave of strikes in Iran. In Keralam, the observance of Ramayan month begins today. More from our correspondent.
9: In Kerala, the Karkadaka month of Malayalam era is observed as Ramayana month, a time when devotees turn to the epic Ramayana for spiritual strength and peace of mind. Today marks the first day of Karkadakam. From the very first day of the Karkadaka month, the recitation of Ramayana becomes a daily ritual in many households and temples across Kerala. Special recitation sessions and devotional programs are also organized in temples during this period. Smithy M. Palliruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
6: On to sports. In men's cricket, hosts England defeated India by 4 wickets in second ODI of 3-match series at Sophia Gardens in Cardiff last night to level the series 1-1. After being invited to bat first, Shubman Gill led men in blue and got bundled out for just 233 runs in 44 overs. Shreyas Iyer emerged as top scorer with 66 runs, while Virat Kohli also contributed 65 runs. In reply, hosts England comfortably overhauled the target in 45th over with 4 wickets in hand as Joe Root scored unbeaten 99 runs and missed his turn by a run. Both the teams will now face each other in the series decider on Sunday at the iconic Lord's Cricket Ground. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. It has predicted heavy rainfall conditions over Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Jharkhand during the day. Similar weather conditions are expected over Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Uttarakhand, Vidarbha, West Bengal and Sikkim for the day. According to the IMD, isolated to scattered rainfall conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab during the next 2 to 3 days. In Jammu and Kashmir, Meteorological Centre has forecast a significant change in weather across the Union Territory from tomorrow with chances of heavy rain and flash floods in vulnerable areas. And now for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
10: Thank you, Shagun. Most of the dailies have covered the Prime Minister unveiling various projects in Punjab, Haryana and Chandigarh to flag off India's first hydrogen power train. BIMSTEC National Security, ZARS, discuss ways to combat terrorism, organized crime, mentions the statesman, while the Asian Age writes BIMSTEC nations to bolster anti-terror, maritime law links. Equity model replaces grants. Centre joins Ventura Capitals to invest in chip firms, informs the Financial Express. The Hindu writes, Parliament set to take up bills to amend FCRA, prevent insult to Vande Mataram. ED cracks alleged terror trail across 5 states, reads a headline in the Pioneer. The Tribune headlines, after over 100 resignations, Centre tightens ISRO exit rules. Supreme Court flags third language timing, mentions the Pioneer. In editorial titled A Game Bigger Than Its Grand Spectacle, the Indian Express writes, as Spain and Argentina face off in what will be their first meeting in the FIFA World Cup since 1996, the finale promises a grand spectacle. Last minute winners, comebacks, extraordinary underdog performances and teeming moments of individual brilliance have made sure that the football itself has never been overshadowed. The spotlight now falls on Spain and Argentina. And finally, the Times of India informs that about the first private orbital rocket launch on Saturday. The papers add, Skyroot Aerospace is days from becoming India's first private space tech startup to launch an orbital class rocket. Vikram 1 is set to lift off at 11:30 from Sriharikota. And with that, it's back to you, Shagun.
6: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3-match series 1-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सलाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मुंबई कर 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आरजे प्रिया। सुबह के 8:40 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई।
2: मत बेकरार करना,

भैया। दिल बिल

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है? ना ना ना ना ना ना ना ना ना।
2: आकाशवाणी FM रेनबो।
3: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। सुबह के 8:50 हो चुके हैं। मस्त मुंबई कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर। जी हाँ, और मैं हूँ आज प्रिया, और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं गुड मॉर्निंग के, और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह अखबार पढ़ रही थी, और अखबारों में जो सुविचार होते हैं ना, वो पढ़ने में मज़ा आता है। कई बार हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं, लेकिन इस तरह के न्यूज़पेपर अगर आप सुबह सुबह हाथ में लेते हैं, कई सारी खबरें होती हैं लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। तो उनमें से ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये सोच कि हम सोचते हैं कि सुख बड़ी उपलब्धियों में मिलेगा। जी हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि बड़ा घर होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत कुछ होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, और बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ओहदा मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध बार बार यही कहते हैं कि स्थायी सुख छोटी छोटी रोज़मर्रा की खुशियों से बनता है, जैसे सुबह की चाय की चुस्की, किसी पुराने दोस्त की अचानक याद, बच्चे की हंसी, बरसात की पहली खुशबू। इन्हें हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं और किसी बड़ी उपलब्धि का इंतज़ार करते हैं। यार बहुत ही मतलब ज्ञान वाली बात नहीं है, बट बहुत सिंपल बात है ज़िंदगी को लेकर। जो आज है, अभी है, यहाँ है, वो आपका है, वही आपको खुशी देगा। जैसे कि FM रेनबो इस वक्त अभी आप सुन रहे हैं FM रेनबो, और आपको FM रेनबो सुनकर कितनी खुशी होती है ये तो हम जानते ही हैं। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किन चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, या

आपका एक कहते हैं ना कि मैं तब बहुत खुश रहूंगा, ये वाला जो सीन होता है ना हमारे दिमाग में रहता है, तो आपके लिए खुशी के मायने क्या है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 107.1 MHz पर।

0: इस गीत के उस पार मैंने सवाल पूछा था कि आप किन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, क्योंकि एक बहुत प्यारा सा ख्याल था, एक सुविचार था जिसमें कहा गया था कि जो आज है, अभी है, हमारे सामने है, ये जो पल है इसी में खुशियाँ होती हैं। जैसे कि एक कप प्याली चाय आप पी रहे हैं, शांत बैठे हैं और बस खुश हैं, किसी बच्चे को देख कर आप खुश हैं, कोई गाना सुनकर आप खुश हैं, तो ये होती है खुशियाँ जिन्हें हमें इंजॉय करना चाहिए, ना कि इन खुशियों को नज़रअंदाज करके उन बड़े सपनों के बारे में सोचते रहना कि वो होगा तो ही मैं खुश रहूँगा या ये होगा तो ही मैं खुश होंगी। तो ये जो सोचते और मैंने आपसे सवाल पूछा तो आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और वाकई में अच्छा लगता है कि आप विजेंद्र घाटोल जी है वो कह रहे हैं कि वो एक किसान है और वो बारिश का इंतज़ार करते हैं और बारिश आने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाते हैं वाकई में। दीपा पालकर जी ने कहा है कि पढ़ाई, एजुकेशन, एक अच्छी खासी जॉब और ढेर सारा पैसा और बढ़िया हाउस और बहुत सारे रिश्तेदार, वाकई में ये उनकी खुशी के मायने हैं। और शुभ लक्ष्मी मस्तकर जी हैं, वो कहती है सबसे ज़्यादा खुशी जब अपनी फैमिली के साथ वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, वो है वाकई में, बिल्कुल दिल की बात कही है आपने। और पंकज मोहड़े वो कहते हैं कि मेरी जीवन में खुशियों के मायने सिर्फ पैसा या बहुत सारी फैसिलिटी में नहीं है, उनको खुशी अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वक्त में आती है। और आप सभी के मैसेजेस इसी तरह से आते रहेंगे और मैं पढ़ती रहूंगी, तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मैं वापस आ गई। 9:07 हो चुके हैं और खुशियों की बातें हो रही थी कि आप किस में खुशियाँ ढूंढते हैं। प्रणव शिंदे बताते हैं कि हवा के झोंकों से तैरती हुई एक धुन आती है, रेडियो की हर छोटी खबर दिल को गुदगुदाती है, सादगी भरी मुस्कान, अमीरी गरीबी का इसे कोई भेद नहीं आता, रेडियो तो हर झोपड़ी और महल में खुशियाँ बिखेरता जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिरोज सिंह गनपुरिया कहते हैं कि खुशी को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, हर एक पॉजिटिव थॉट में खुशी होती है। ठीक, मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए, आप खुश हो जाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने। पंकज मोहर तो हमें बता ही चुके हैं कि जीवन में बड़ी बड़ी पैसे या फैसिलिटी में खुशियाँ नहीं होती हैं, फैमिली में खुशियाँ होती है। और प्रमोद चिंचोलकर कहते हैं कि हम गाने सुनकर खुश होते हैं। थैंक यू सो मच। आर्यन सोमवंशी हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। दत्तात्रेय आड़त जी हैं, वो भी हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। और नासिक से अजीत पवार लिखते हैं कि रेडियो में जब वो गाने सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो वाकई में इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि FM में रेनबो आप सुनते हैं, आकाशवाणी मुंबई का, तो आपको अच्छा लगता है, आप खुश होते हो। तो ये खुशी के पल है जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, और ये जो वक्त है यही ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत आपको सुनाती हूँ, सुनते रहिए FM रेनबो।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: नौ बजकर 17 मिनट हो चुके हैं. मस्त मुंबई प्रोग्राम शुरू हो चुका है. आप सभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. डॉक्टर अंजू जो है हमें गुड मॉर्निंग कह रही हैं, गणेश पाटिल और बहुत सारे शुभदा जी हैं, सभी ने अपने अपने मैसेजेस भेजे हैं. शुभदा जी कहती हैं कि जब हर कोई खुश होगा और सेटिस्फाई होगा, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ज़रूरतमंद, उन्हें खुश देख कर उन्हें खुशी होती है और आगे भी होती रहेगी. थैंक यू सो मच. तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. मस्त मुंबई कार्यक्रम शुरू है और आज है 17 जुलाई और इतिहास के पन्नों से मैं ये तारीख लेकर आई हूँ. और इस तारीख में क्या हुआ था खास, जिसने आधी आबादी की तकदीर बदल दी थी. जी हाँ, आज ही के दिन श्रोताओं कैलेंडर पर आज तारीख है 17 जुलाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से ठीक 78 साल पहले यानी 1948 में इसी दिन एक नया इतिहास लिखा गया था. 17 जुलाई 1948 से पहले देश की पुलिस सेवा हो या प्रशासनिक सेवा, फाइलों पर दस्तखत करने वाले हाथ सिर्फ पुरुषों के होते थे. महिलाओं के लिए इन ऊंचे पदों के दरवाजे बंद थे. लेकिन फिर आया आज का वो ऐतिहासिक दिन. उस वक्त की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और महिलाओं को IAS IPS जैसी तमाम सरकारी सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने का हक मिला था. सोचिए कितनी बड़ी बात है. और इस एक फैसले ने हमारी देश की जो बेटियां हैं उनकी उड़ान को आसमान दे दिया था और बंदिशें टूटी और देश को मिली पहली महिला IAS अन्ना राजम मल्होत्रा और पहली महिला IPS किरण बेदी जैसी जाबाज शख्सियत. आज जब हम जिले की कमान किसी महिला कलेक्टर के हाथ में देखते हैं या किसी महिला पुलिस अफसर को अपराधियों के छक्के छुड़ाते हुए देखते हैं तो सीना गर्व से चूड़ा हो जाता है. तो आज सलाम है देश की उन सभी जाबाज महिला अधिकारियों को जो अपनी लीडरशिप से इस देश को चला रही हैं. और सलाम है 17 जुलाई के उस ऐतिहासिक दिन को जिसने कहा कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें सच भी करना पड़ता है कड़ी मेहनत से.

दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई कार्यक्रम आर्ज प्रिया के साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, और 17 जुलाई की बात हो रही है। और वैसे देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और हर पीड़ित को इंसाफ दिलाना ही मानवता की सबसे बड़ी जीत कही जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जा रहा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसानियत के खिलाफ होने वाले अपराधों के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ खड़ा होना होगा। न्याय की डोर सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो आइए इस खास दिन पर हम भी संकल्प लें कि हम अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएंगे और समाज में समानता और इंसाफ का साथ देंगे, क्योंकि जहां न्याय की नींव मजबूत होती है वहां एक बेहतर समाज बनता है।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: कौशल्याबाद की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 9:30 हो चुके हैं और हम दिन विशेष की जब बात करते हैं, जैसे कि आज है 17 जुलाई, और क्या होता है इस दिन खास, क्या हुआ था इतिहास के पन्नों में खास, या फिर किसी का जन्मदिन है। वैसे आज अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है, उनको ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की एफएम रेनबो के पूरे परिवार की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से। वैसे आपको एक बताना चाहूँगी कि बात चाहे प्यार जताने की हो या फिर कुछ गड़बड़ है का इशारा करने की, बिना बोले दिल की हर बात कह देते हैं हमारे प्यारे प्यारे इमोजी। कुछ समझ में आया? कुछ सालों पहले इन इमोजीज यानी सोशल मीडिया पर जब हम चैटिंग करते हैं तो कुछ ऐसे मेम्स भेजते हैं, छोटे छोटे येलो येलो कलर के वो जो रहते हैं, और उनके कई सारे फीलिंग्स वाले होते हैं, रोने वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, प्यार वाले होते हैं, तकरार वाले होते हैं, हंसने वाले होते हैं, चिढ़ाने वाले होते हैं, तो उन्हीं को याद

करने के लिए, इनको सेलिब्रेट करने के लिए आज वर्ल्ड इमोजी डे जी हाँ मनाया जा रहा है। वहीं वो छोटे छोटे पीले चेहरे जो हमारी बोरिंग मैसेजेस पे भी जान फूंक देते हैं। ज़रा सोचिए, अगर ये इमोजीज ना होते तो चैटिंग की दुनिया कितनी फीकी होती ना। बस हम बातें करते जा रहे, कोई इशारा नहीं, कुछ भी नहीं, तो बिना किसी लंबी चौड़ी बात के भी एक थम्स अप दिखाते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई तुम्हारी बात समझ में आई, या भाई आप ठीक कह रहे हो। या जैसे आंसू बहाकर हंसने वाली इमोजी होती है, जैसे किसी ने जोक्स मारा तो बस उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि भाई लिखने की कि तुमने बहुत अच्छा जोक्स मारा है, हाँ हाँ हाँ, बस एक हंसने वाली इमोजी भेज दो, हमारा काम आसान हो जाता है, होने लगा है। और देखते ही देखते ये इमोजीज जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कई लोग तो बिना इमोजी के बात ही नहीं करते, उनमें से मैं भी हूँ। मुझे अगर कोई मैसेज भेजे और मुझे एक्सप्रेस होना है तो मैं इमोजीज भेज देती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है। और आपकी कौन सी पसंदीदा इमोजीज है, आप व्हाट्सएप पर अगर हमारे साथ हैं तो मुझे ज़रूर इमोजीज भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। जी हाँ, आप बता सकते हैं कि किस तरह की इमोजीज आप पसंद करते हैं। और आज अगर आपको वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट करना है तो अपने दोस्तों को धड़ाधड़ इमोजीज आज दिन भर भेजिए। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों, तो कहना प्रिया ने सुबह रेडियो पे कहा था आज इमोजी डे है और हमें सेलिब्रेट करना है। ठीक है, सुनते रहिए FM रेनबो। के बाद उस पार हम एक मैटिनी शो है, आज शुक्रवार है, हम देखेंगे कौन सी फिल्म होगी। सुनने के लिए इंतजार कीजिए।

तो चलिए मस्त मुंबई कार्यक्रम में इमोजी की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, लेकिन आप सभी की जो इमोजीज है मुझे आप भेजे जा रहे हैं इतनी प्यारी प्यारी है कि बस मैंने भी ठान लिया है भले कुछ ना हो। जैसे कि हमने शुरुआत में छोटी छोटी खुशियों की बात की थी कि यही तो खुशियाँ कि आप इमोजीज भेजे जा रहे हैं, मैं भी आपको व्हाट्सअप के जरिए भेजी जा रही हूँ। तो ये जो खुशी का ये जो पल है ना, ये कितने सेकेंड का है, कितने फ्रेम का है, ये हमारे दिमाग में नहीं है, लेकिन हमारे चेहरे पर मुस्कान आ रही है, यही तो होती है खुशी इस पल की, इस वक्त की, जो हम और आप एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। तो चलिए शुक्रवार का दिन है, मैटनी शो, जी हाँ, उसे एंजॉय करते हैं। और आज ही के दिन यानी 17 जुलाई 2015 को फिल्म रिलीज हुई थी बजरंगी भाईजान। तो आज मैटनी शो में बजरंगी भाईजान के बारे में बातें करेंगे। श्रोताओं, क्या सरहदें सच में दिलों को बांट सकती है, आपका क्या कहना है? फिल्म बजरंगी भाईजान हमें यही सिखाती है कि प्यार और इंसानियत की कोई सीमा नहीं रहती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। और कबीर खान के डायरेक्शन में बनी बजरंगी भाईजान फिल्म की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक ऐसी मासूम, बोल सुन नहीं पाने वाली पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली बच्ची मुन्नी की, जो गलती से भारत आ जाती है, बॉर्डर क्रॉस हो जाती है, और उसे सहारा मिलता है हमारे सीधे साधे पवन कुमार चतुर्वेदी का, यानी बजरंगी भाईजान का, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मुन्नी को सरहद पार उसके घर पहुंचाने निकल पड़ते हैं। और इन दोनों का ये जो सफ़र है, इन दोनों का कनेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो प्यार है, अपनापन है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी बल्कि नफरत पर मोहब्बत की जीत का एक खूबसूरत पैगाम था। क्या आपने ये फिल्म देखी थी, कैसे लगी आपको? अगर देखी थी तो ज़रूर बताइए, और अगर नहीं देखी है तो हमारे साथ देखिए। सुनते रहिए FM रेनबो, जहाँ पर अब शुरू है मैटनी शो। फिल्म है बजरंगी भाई।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। हम सुन रहे हैं मैटनी शो। जी हाँ, रेडियो पे है तो सुनेंगे। और बात हो रही है बजरंगी भाईजान फिल्म की। आज ही इस फिल्म को मतलब रिलीज हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं। और ये सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी बल्कि सरहद पार के रिश्तों, इंसानियत और बेपनाह मोहब्बत की एक बेहद खूबसूरत मिसाल थी। कहाँ एक तरफ हनुमान जी के पक्के भक्त पवन कुमार चतुर्वेदी, जो कभी झूठ नहीं बोलते, और कहाँ दूसरी तरफ वो नन्ही सी बच्ची शाहिदा, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बस इशारों में बात करती है। पूरी फिल्म में मुन्नी ने एक शब्द तक नहीं बोला, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी आंखें और प्यारी सी मुस्कान से सबका दिल जरूर जीत लिया था। फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा की वो मासूमियत

और करीना कपूर का रसिका वाला किरदार भले ही छोटा था लेकिन फिल्म को एक खूबसूरत ठहराव देता है और बजरंगी भाईजान की धड़कनें तेज करता है ना।

और फिल्म की कहानी तो आपने सुन ली, कलाकार कौन से हैं, क्या क्या किरदार निभाए सभी ने, ये भी आपने सुन लिया। इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी हुई थी और क्लाइमैक्स का वो सीन जहां मुन्नी बोलती है और सलमान खान को देखकर वो मामा कह के बजरंगी भाईजान को देखकर चिल जोर से उन्हें आवाज़ देती हैं और वो सीन देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहाँ तो ये भी जा रहा है कि इस सीन की जो शूटिंग हो रही थी और सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स जो हैं उनकी आंखें वाकई में नम हो गई थी और इंसानियत का संदेश देने के लिए इस फिल्म को वाकई में बनाया गया था ऐसा लगता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि मजहब, देश और भाषाएं इंसानों को बांट नहीं सकती, लेकिन एक बच्चे की मासूमियत और एक इंसान की नेकी सारी सरहदों को तोड़ सकती है। नफरत के इस दौर में इस फिल्म का प्यार जो है ये बहुत बड़ा पैगाम है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। वीकेंड है और 11 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने तो ये फिल्म देखी थी, मतलब फर्स्ट डे गई थी मैं देखने और मुझे अच्छी लगी थी। बस ये मेरा अपना रिव्यू था कि मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, लगा था कि कुछ तो है। तो चलिए मैटनी शो में बजरंगी भाईजान की ये बात और एक प्यारा सा मतलब एक कव्वाली है उस फिल्म की फेमस है वो आपको सुनाती हूँ। उसके बाद ठीक 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत प्रमुख समाचार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस घंटे के प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। अमरीकी सेना ने कल रात ईरान पर फिर से सैन्य हमले किए। दोनों देशों के बीच शांति समझौता टूटने के बाद इस्लामी गणराज्य पर अमेरिका का ये लगातार छठा हमला है। इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान पर अमेरिकी हमले में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद 3 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। क्रिकेट जगत से समाचार। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 45वें ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो ये थे इस घंटे के प्रमुख समाचार।

समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है। वक्त हो चला है 10:02 और आप सुन रहे हैं आरजे प्रिया के साथ कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
4: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
6: फिर एक बार स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, नमस्ते भारत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस वक्त हो चला है 10:16, और ये तो आप जानते ही हैं कि हर शुक्रवार को हम नमस्ते भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा सेगमेंट लेकर आते हैं। और चलिए गाँव की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए, अक्सर हम स्मार्ट शब्द जो है मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट सिटी कहते हैं इन्हें, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वाईफाई होते हैं, 24 घंटा पानी होता है, लंबी चौड़ी सड़कें होती हैं, चमचमाती गाड़ियाँ होती हैं, कई सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी स्मार्ट गांव के बारे में सुना है? एक ऐसा गांव जो शहरों से भी दो कदम आगे निकल चुका है, और वो गांव है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के पुरंदर तालुका का आड़ाचीवाड़ी गांव। आखिर क्या है इस गांव की खासियत, जानेंगे इस गीत के उस पार। वैसे ये गीत जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं अभिनेत्री, जी हाँ, जरीना वहाब को। आज इनका जन्मदिन भी है और हमारे सेगमेंट का नाम है गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा।

0: जी हाँ, बेहद जल्द सावन आ जाएगा और जितनी भी ख्वाहिशें हैं आपकी किसी को लेकर आप ज़रूर पूरा करेंगे। सावन को आने दो फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गीत था। और तो नमस्ते भारत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, सेगमेंट चल रहा है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। और जैसे ही मैंने गाँव का नाम लिया है, आप में से कई लोग उस गाँव के बारे में जानकारी मुझ तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पंकज मोहर जी हैं, प्रणव शिंदे जी हैं, उन्होंने तो उस गांव को लेकर एक कविता ही शेयर की है कि पहाड़ों की छांव में पुरंदर की माटी सजी है, आड़ाचीवाड़ी के रूप में जैसे प्रकृति की कोई कला सजी है। वाकई में थैंक यू सो मच। और फिरोज सिंगनपुरिया कहते हैं कि ये जो सावन को आने दो जो गाना था वो उनके दिल की फीलिंग थी और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा ये गाना। प्रमोद चिंचोलकर को भी ये गाना बेहद पसंद आया है क्योंकि अभी जो मौसम जो है, मौसम का हाल जो है, थोड़ा प्यारा प्यारा तो है ही और सभी को अभी सावन का इंतज़ार है। महाराष्ट्र में आषाढ़ का ये जो महीना होता है ये भी बहुत ही प्यारा महीना होता है, धार्मिक माहौल होता है। आपने पंढरी जी वारी के बारे में तो सुना ही है, वारकरी संप्रदाय के जो लोग होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो पैदल चलकर पंढरपुर तक पहुँचते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं वो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाहर से, और वो जो उनका ये जो मैनेजमेंट होता है ना इस वारी का, वो वाकई में देखने लायक होता है। अगर आप में से कोई वारी कर चुका है या करने का इरादा रखता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा कार्यक्रम शुरू है और जिसमें मैं बात कर रही हूँ बेहद ही प्यारे से गाँव के बारे में, जिसके बारे में जब मैंने देखा, जब मैंने सुना, तो मैं खुद मतलब सोचने लग गई कि हमारे भारत देश का हर गाँव अगर इस तरह हो तो फिर क्या हो। पुणे ज़िले के पुरंदर तालुका का आड़ाची गाँव को लोग 2050 का गाँव कहते हैं। 2026 चल रहा है, यानी वो 20-25 साल आगे हैं। और आड़ाचीवाड़ी गाँव की सबसे पहली और अनोखी बात जो हमें पता चली कि वहाँ सुबह की शुरुआत मोबाइल देखकर नहीं होती है कि उठे और मोबाइल देख के आधा घंटा और बेड पर पड़े रहें। यहाँ सुबह होते ही पूरा गांव, बच्चे बूढ़े नौजवान सब हाथों में झाड़ू लेकर घर के बाहर आते हैं। ये कोई एक दिन की स्वच्छता अभियान नहीं है कि चलो आज स्वच्छता अभियान है, झाड़ू लेकर हम झाड़ू मार लेते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये उनका रोज़मर्रा का काम है। इस गाँव में 100% प्लास्टिक मुफ्त है ये गाँव। और यहाँ पर गांव में डस्टबिन कहाँ रखे हैं इसकी जानकारी हमें गूगल मैप पर मिलती है। सोचिए, आड़ाचीवाड़ी गांव के लोगों ने लोक सहभाग यानी कि आपसी एकता को अपना हथियार बनाया है। और यहाँ घरों की दीवारें बोलती है, हर दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी है जो कोई ना कोई सामाजिक संदेश ज़रूर देती है। इस गाँव के बारे में इसी तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

बजकर 35 मिनट हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत के अंतर्गत कोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा और गांव की सैर कर रहे हैं हम आड़ाचीवाड़ी। जी हाँ, और आप में से कई लोग बता रहे हैं कि उनको इस गांव की जानकारी अच्छी लग रही है और इस गांव के बारे में जैसे मैंने कहा कि डस्टबिन अगर गाँव में आपको ढूंढना है तो गूगल मैप पर आपको पता चल जाएगा कि गाँव में कहाँ कहाँ डस्टबिन है। प्लास्टिक आपको मिलेगा नहीं, रोज़ सुबह इसकी सफाई होती है और लोगों ने आपसी एकता के तहत इस गाँव को पूरी तरह से खूबसूरत और साफ सुथरा रखा है। और गांव में कहते हैं ना कि अक्सर गांव में पानी की, खासकर साफ सुथरे पीने के पानी की किल्लत होती है, लेकिन आड़ाचीवाड़ी में वाटर एटीएम लगे हैं और गांव वाले एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं और सिर्फ 1 रुपए में 5 लीटर आरओ का फिल्टर पानी उन्हें मिल जाता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, यहाँ की बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है क्योंकि पूरा गांव 24 घंटे सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा पर चलता है। पूरे गांव में मुफ्त वाईफाई भी है और सुरक्षा की बात की जाए तो 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्या सोच रहे हैं आप इस गांव के बारे में, कभी जाएंगे यहाँ पर, विजिट तो करने लायक है। और यहाँ सुविधा दिल्ली मुंबई के पॉश इलाकों में जैसे हमें मिलती है ना, उसी तरह की सुविधा इस गांव में है। और ये गांव अपना एक कहते हैं आलीशान एयर कंडीशनर, इस गांव में ना जिम है और जहाँ हमारे शहरों में हज़ारों में फ़ीस होती है जिम की, यहाँ कुछ ही पैसों में लोग जिम जाते हैं। टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सेहत का एक प्यारा सा संगम है आड़ाचीवाड़ी और वो यहीं पे मिलता है। और वैसे इस गांव की कहानी काफ़ी कुछ बाकी है और प्यारे से गीत के बाद बताऊंगी कि कैसे इस गांव ने एक बहुत पुराने अंधविश्वास को तोड़कर इतिहास रचा है। सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल, जहां पर है आरजे प्रिया आपके साथ।

0: जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस खूबसूरत जिंदगी में अपना रंग मिलाइए और देखिए ये जिंदगी और भी हसीन है। 107.1 FM Rainbow, musically yours. आकाशवाणी FM Rainbow.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: फिर एक बार स्वागत है आप सभी का, 10:44 हो चुके हैं और नमस्ते भारत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आरजे प्रिया के साथ और गांव की सैर कर रहे हैं हम। और जिस गांव की मैंने बात की है और आड़ाचीवाड़ी गांव की बात हो रही है और मैंने ब्रेक के उस पार आपसे कहा था कि इस गांव ने एक अंधविश्वास को तोड़कर वाकई में इतिहास रचा है। और पता है वो इतिहास क्या है, गौर से सुनिए। आमतौर पर हमारे समाज में जैसे शमशान भूमि कहते हैं, उसे नकारात्मकता से जोड़ कर देखा जाता है, मतलब वहाँ पर जाना, वहाँ पर देखना, वहाँ की बातें करना, इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता, उसे थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। सूरज ढलने के बाद वहाँ तो हम जाने से, मतलब एक होता है ना कि जाने से लोग कतराते हैं, लेकिन आड़ाचीवाड़ी गाँव ने इस अंधविश्वास को तोड़ दिया है। कैसे? इस गांव के बच्चे हर शाम 7 बजे गांव की शमशान भूमि में बने नाइट स्टडी सेंटर में जाकर पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, और गांव के रिटायर्ड टीचर्स वहां आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यूपीएससी एमपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी भी वहां पर बैठकर कराते हैं। और वहाँ पर लाइटिंग की सुविधा है, बच्चे वहाँ बैठते हैं बिना डरे, बिना कुछ नेगेटिव थॉट दिल में लाए बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। सोचिए कितनी अलग बात है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं वहाँ ज्ञान का दिया जलाया जाता है और यही खासियत है इस गांव की। और इसके अलावा इस गांव को जिला परिषद, गांव का जो स्कूल है जिला परिषद का, वो पूरी तरह से डिजिटल है और बच्चों के हाथों में टैबलेट्स हैं और बच्चों को स्कूल जाने के लिए गांव की तरफ से फ्री में इलेक्ट्रिक ऑटो व्यवस्था की गई है। इस ऑटो में बैठ के वो स्कूल जाते हैं, इंजॉय करते हैं स्कूल में। वाकई में ये सिर्फ एक गाँव का विकास नहीं है, ये हमारी मानसिकता की भी क्रांति है।

तो अड़ाचीवाड़ी गांव की जानकारी आपको कैसे लगी? आप सोशल मीडिया के जरिए जरूर हमें बता सकते हैं। अभी वक्त हो चला है मुझे आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते बस इतना कहूंगी कि अड़ाचीवाड़ी गांव साबित करता है कि अगर ग्रामीण समाज ठान ले तो बिना किसी की पूरी तरह की मदद से आत्मनिर्भर वो हो सकता है, और हर गाँव अत्याधुनिक, आत्मनिर्भर और आधुनिक बन सकता है। तो चलिए इसी बात को लेकर आप सभी से विदा लेती हूँ, और आज ये रोशनी स्टूडियो में आ चुकी है, और अगला ये जो संगीत का सफ़र है FM रेनबो का, आप उनके साथ जारी रखिए, और आरजे प्रिया को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए 107.1 MHz पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं और नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को राम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की पवित्र रथ यात्रा आज सुबह 9:30 बजे फिर शुरू हो गई है। कल शाम अंधेरा होने के बाद रथों को खींचने के प्रति रोक दी गई थी। दिव्य रथ यात्रा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी की ग्रैंड रोड पर उमड़ रहे हैं। और समाचारों के अंत में, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जो विदेशी ऐसी आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देता है वो अमेरिकी सभ्यता के विरोधी हैं और अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो सेवा पर।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। शुरू हो गया है कार्यक्रम ब्रेक फ्री और पहला गाना लगान फिल्म से आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक की। और आज ब्रेक फ्री में आपके साथ है रोशनी।

आपने पुकारा और मैं आ गई हूँ, यानी रोशनी आ गई है। आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर ब्रेक फ्री कार्यक्रम तो शुरू हो गया है, और कहना तो चाहती हूँ कि भागते दौड़ते मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बड़े आराम से जो है एस्केलेटर की मदद से मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। आजकल ऐसे हुआ है ना, कहाँ पर भी जाते हैं तो सीढ़ी चढ़ना उतरना ये भी हम लोग मानो भूल ही गए हैं। घर तक पहुँचना है तब लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे प्लेटफॉर्म चले जाते हैं, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिफ्ट होते हैं, एस्केलेटर होता है, और उन्हीं की मदद से जो है हम चढ़ उतर सकते हैं। लेकिन देखो, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये ही अब थोड़ी सी दुर्लभ बात हो गई है। लेकिन एक वक्त था जब लोग सोचते थे कि पेड़ों पर चढ़ना ये बहुत आम सी बात है, ये कला हर कोई जानता है। लेकिन आज की तारीख में, आज की दुनिया में क्या ये कहना सच है या नहीं?

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: भवन।
1: साउथ ऑफ इंडिया की ये असली कहानी है, जहाँ पर इस परिवार का सालों से एक काम था कि खजूर जो है वो बेचते थे, और जो पहले की पीढ़ियाँ थी वो खुद पेड़ों पर चढ़कर खजूर जो है तोड़ते थे। अब पीढ़ी बढ़ती गई, अब आगे बढ़ती रही, और अब ऐसे हुआ कि जो पिता थे वो 70 साल के हो गए हैं और बेटा बड़ा हुआ है, वो एक इंजीनियर बन गया है, और वो देख रहा था कि अब पिता को मुमकिन नहीं है कि इतने ऊंचे पेड़ पर वो चढ़ पाए। तब उसने एक तरकीब ढूंढ निकाली और उतनी ऊंची एक सीढ़ी बनाई जहाँ पर हर रोज जो पिता है आसानी से सीढ़ी जो है चढ़ते उतरते समय जो है वो जो अपना काम भी कर पाते हैं और उन्हें पेड़ चढ़ने की जो मेहनत है वो बच जाती है। अब जब देखा गया तो ये सीढ़ी जो है उसका खर्चा रहा 60,000। अब कुछ लोगों को लगा ये बहुत ज़्यादा कीमत है, लेकिन जिस तरह का उनका काम है, उन तरह का उनका बिजनेस है, उसका ऐसा कहना है कि लॉन्ग टर्म पर ये एक इन्वेस्टमेंट है। और सिर्फ उसके पिता ही नहीं, छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं भी जो है इस सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकती है, और चाहे घर के जितने दूसरे सदस्य हैं या फिर आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर काम में ज़रूर हाथ बटा सकते हैं। तो ऐसे बहुत अलग तरकीबें ढूंढ निकालते हैं, और मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन एक नायाब सी जब आइडिया आ जाती है तब आसान हो जाता है अपना वही मुश्किल भरा काम।

0: मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो। जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

अब कोई जो है अपना काम करने के लिए, बिजनेस बचाने के लिए नए तरीके से पेड़ पर चढ़ रहा है, लेकिन आज भी कई सारे छोटे गाँव में उसी परंपरा के तौर पर जो है पेड़ों पर चढ़ा जा रहा है। लेकिन ये खास तौर पे देखा गया था कोविड के दिनों में, जब ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन स्कूल हुआ करते थे, तब ऐसे हुआ कई सारी छोटी से छोटे गांव में जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं रही है, ऐसे गांव में टीचर्स और स्टूडेंट्स ये दोनों भी जो है पेड़ पर चढ़कर जो है स्कूल अटेंड करते थे। तो स्टूडेंट्स भी जो है अपने अपने घर के पास का जो पेड़ है वहाँ पर जाकर पेड़ पर चढ़ते थे, और टीचर्स भी उसी तरह पेड़ पर चढ़कर जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी जहाँ पर सही मिले वहाँ पर जाकर वहाँ से जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो निष्ठा पूरी पूरी थी, और ये छोटे गांव की कहानी है। और हाल ही के साल पहले है, कुछ साल पहले की ही बात है कि हाल ही की बात है कि जब ऐसे हुआ था। यानी हमें अगर लग रहा है कि ये जो बात है या फिर ये जो कला है आजकल आसानी से सबको पता नहीं है तो है, लेकिन शायद हमारे आसपास ऐसे वो लोग नहीं हैं। लेकिन जैसे हमारे लिसनर हैं संजय दर्शन, उनका कहना है कि उन्होंने भी बचपन में खूब पेड़ चढ़े हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, इमली का हो, आम का हो, अमरूद, जामुन, हर एक पेड़ पर वो चढ़े हैं, और इस हद तक कि उन पेड़ों से उनकी बहुत अच्छी जान पहचान हो, इस तरह का रिश्ता रहता है जब ये कला जो है हम खूबी जानते हैं। लेकिन ये कला आजकल और

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: अब पेड़ों की बातें कर रहे हैं और कई सारे लिसनर्स उनको अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, कैसे बचपन में पेड़ों के साथ एक अनोखा रिश्ता था। किसी को ऐसे लग रहा है कि वो बचपन में तितली की तरह पेड़ फूल पौधे इनके आसपास इतराते रहते थे और कोई अपने आप को बड़े शान से बंदर कहलवाना पसंद कर रहा है। लेकिन पेड़ों के साथ रिश्ता वाकई बहुत खूबसूरत होता है और उनके आसपास रहने पर हमें दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। लेकिन एक जेंटलमैन का ऐसा कहना है कि दिल्ली शहर में लोगों को ट्री ब्लाइंडनेस है, यानी लोग अपने आसपास के जो लोग हैं उनके पास कौन सी गाड़ियाँ है, घर किस तरह का है, कपड़े कौन से है, किस ब्रांड के चश्मे पहने हुए हैं, मेकअप स्किन केयर, इन सारी बातों की खबर रखते हैं। लेकिन उनके आसपास हरियाली कितनी है, पेड़ है या नहीं, इस पर उनकी नज़र ही नहीं जाती। शायद इसीलिए उन्होंने एक एक्टिविटी शुरू की है जहाँ पर लोग आते हैं, पेड़ों से एक नया रिश्ता बनाते हैं, उन्हें छूते हैं, उन्हें हक करते हैं, आसपास जो पेड़ है उनका ख्याल रखते हैं। और जब ये सारी बातें होती है इसमें 5 साल से लेकर 50 साल तक हर एक शख्स जो है शामिल होता है और जो बड़े होते हैं उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते हैं और यंगस्टर्स और टीनेजर्स है उनका अब एक नया अनोखा रिश्ता बन रहा है इन्हीं पेड़ों के साथ। और जो कला हमें लग रही है बड़ी बड़ी दुर्लभ हो गई है, लोग भूल गए हैं, वो अब नए से सीख रहे हैं और अब शायद एक ऑफ बीट एक्टिविटी बन गई है।

मेट्रोज में या फिर बड़े शहरों में अब की जो जनरेशन है उन्हें हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त ही नहीं देखते, तो पेड़ों पर चढ़ना मानो उन्हें ये बात मालूम ही नहीं है ऐसे हमें लग रहा है। लेकिन आजकल भी ये होता है, ख़ास तौर पर जब लोग ट्रैवल करने जाते हैं तो उस वक्त ट्री हाउस इस तरह के जब होटल्स होते हैं वहाँ पर रहकर वो एक उस तरह का अनुभव लेना पसंद करते हैं। एग्रो टूरिज्म भी जो है आजकल लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ कुछ दिनों के लिए उनके लिए एक बहुत एक अलग एक्टिविटी है, एक बहुत अलग माहौल है। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब ये आम सी बात थी, हर रोज़ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और जैसी आज सारी अलग अलग बातें हमने जानी हैं, ये पता चला है शायद बड़े शहरों में ये बात आम ना हो, लेकिन

आज भी हमारे देश के कोने कोने में, छोटे शहरों में, छोटे गांव में, आज भी जो नई पीढ़ी है आज भी पेड़ों से एक अपना अलग रिश्ता बनाए हुए है, और ये जो चढ़ने उतरने की कला है उन्हें बखूबी आती है। तो आज का ब्रेक फ्री कार्यक्रम जो है, प्रकाश शिंदे ने एक बहुत प्यारी बातें कही है, उसी के साथ यहाँ पर मेरी बातों को पूरा करती हूँ। तो उनका ऐसा कहना है कि बचपन की वो हर एक कहानी याद आती है, पेड़ों पर चढ़ने की वो नादानी याद आती है, जब छू लेते थे आसमान को ऊंची डाल पर जाकर हवा के झोंकों में वो बहती जवानी याद आती है, ना पेड़ की ऊंची शाख पर बैठना एक कमाल था, नीचे गिर जाने का दिल में कहां कोई मलाल था, उतरने की जल्दी न थी, चढ़ने का जुनून था, उन पत्तों की छांव में छिपा जन्नत का सुकून था। क्या बात है, इसी के साथ जो है एक जन्नत का सुकून किसमें है ये भी पता चला है, और जब रूखी सूखी रोटी भी मिल जाती है उसमें भी जो सुकून है वो अब गाने के जरिए जो है हम जान लेते हैं, सुनते हैं नायक फिल्म का गाना शंकर महादेवन और अलका याग्निक की आवाज़ें।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं और अब नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली भारत की पहली ट्रेन को हरियाणा के जिंद स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन जिंद से सोनीपत तक चलाई जाएगी। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले इस ट्रेन का निर्माण पूरी तरह भारत में किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। शाह कल राज्य के जुमाछाव के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। गुजरात में आतंकवाद निरोधक दस्ते ACS ने प्रतिबंध पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। और समाचारों के अंत में, गोवा सरकार ने 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के कैसिनो गेमिंग क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अधिसूचना में समुद्र तट के पास कैसिनो जहाजों के लाइसेंस शुल्क के भुगतान संबंधी सख्त प्रावधान भी शामिल है। कैसिनो संचालकों द्वारा निर्धारित समय में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने पर 18% जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। बारह बजे के समाचार पूरे हो गए हैं, 12:02 और अब FM रेनबो पर शुरू हो गया है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे। 12 से 12:30 बजे तक का हमारे पास वक्त है। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और फ्राइडे फन भी होता है, फैंटास्टिक भी होता है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ऐसे गाने हम सुनने वाले हैं जहाँ पर दिल और दिमाग को थोड़ी सी छुट्टी देनी है, बस गानों को एंजॉय करना है और हो सके तो साथ में थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी ले लो, क्योंकि अब फुल फ्री और फन करने का टाइम आ गया है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं रोशनी आप सभी का फिर एक बार स्वागत कर रही हूँ म्यूजिक कैफे कार्यक्रम में, जहाँ पर मस्त बढ़िया से गाने जो है आज हम सुन रहे हैं। दौर हो गया, एक अरसा हो गया ये गाने सुनते हुए, और उन गानों का मजा लिया जा रहा है। मौसम का हाल फिलहाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसे होता है अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। तो इस मौसम में मुंबई शहर में क्या हो रहा है, या फिर ऐसे बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं में से एक जो है वो एक आदमी क्या करता है कि उन्होंने एक बार 50 छाते खरीदे 5,000 रुपए के, यानी हर छाता 100 रुपए का। ऐसे जब अचानक से ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है, वो रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, और जब तेज़ बारिश है अचानक से आ जाती है, हर बार लोगों के पास छाता हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन घर तक तो पहुँचना है, तो वही छाते जो है वो हर छाता 200 रुपए में बेचना शुरू करते हैं। और आज के दौर में जब लोग काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, वो सोचते हैं 200 की कोई बड़ी बात नहीं है, सही सलामत हम जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी वो छाते खरीद भी लेते हैं। और इस तरह उसी आदमी ने एक घंटे में वो 50 के 50 छाते जो है बेच दिए, और जो छाता 100 रुपए का खरीदा था वो 200 में उसने बेच कर जो है 5,000 रुपए का मुनाफा जो है एक ही घंटे में कर दिया। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो अगर इस तरह की जाती है तो वाकई मुनाफा है, और आइडिया इस तरह मिले तो फिर क्या ही कहना, बड़ा बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोटी से तरीके से और कम वक्त में इतना कुछ कर सकते हैं।

ये क्या, एक जेंजी कपल ने भी पैसे कमाए? और कौन से दिन कमाए? अपने शादी के दिन ही पैसे कमाए। तो कि उन्होंने ऐसा किया कि अपनी शादी के दिन जो है कई सारे फॉरेन टूरिस्ट है उन्हें इनविटेशन भेजा, और ये इनविटेशन बस आम सा इनविटेशन नहीं था, हर एक फॉरेन टूरिस्ट से जो है कम से कम 22 से 24 हज़ार जो है लिए गए, और इस तरह

उन्होंने उन फॉरेनर्स को अपने शादी में शामिल किया और फिर वो भी यहाँ भारत देश में आए थे। यहाँ की शादियाँ, खाना, गाना, नाच, सब कुछ उन्होंने अनुभव किया 22,000 से 24,000 रुपये चुका कर। और यहाँ क्या, जहाँ पर लोग बड़ा बड़ा खर्चा हुआ ऐसा कहते हैं शादी के दिन, उसी दिन इस कपल ने जो है खूब कमाई की और एक ऐसा अनुभव भी कमाया जो जिंदगी भर के लिए उन्हें भी याद रहे और उस हर एक शख्स को जिन्होंने इनकी शादी अटेंड की।

और इसी के साथ आज का म्यूजिक कैफे कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। 1 बजे होंगे समाचार और समाचारों के बाद जब हिट एंड हॉट कार्यक्रम शुरू होगा तब क्या होने वाला है उसके लिए बस इतना ही बता देती हूँ, जितने भी सारी हॉरर फिल्म्स है, थ्रिलर फिल्म्स है, सस्पेंस मूवीज़ और उनके गाने याद कर लो क्योंकि 1 बजे के बाद वो हमारे बड़े काम आएंगे और हमारे पास ही रहने वाले हैं। अभी के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आकाशवाणी एफएम रेनबो। न्यूज ऑन एयर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और अब ठीक 12:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोडायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंबा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्म बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
3: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
3: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
4: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
5: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
4: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
5: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
4: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
5: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
4: कैसे बना हिमालय।
5: आज रिद्धि,
4: नव्या
5: और रिदित
4: सब बहुत खुश है
5: क्योंकि उनका परिवार
4: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
6: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
7: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
6: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
7: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
6: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
7: बहुत मजा आएगा।
5: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
4: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
5: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
4: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
5: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
4: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
6: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
5: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
6: क्या 20 करोड़ साल?
5: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
6: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
5: नव्या अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
7: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
6: रुको रुको मैं बताती हूँ।
5: तुम बताओ।
6: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
5: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
6: टैथिस महासागर।
5: वाह,
6: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
5: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड

0: धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और

0: विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: आजा, आजा, आजा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा?
0: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डर कर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
3: बोलो
2: दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।

0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा,
1: राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: दो शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
2: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: इसी के साथ आज का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग यहीं पर पूरा होता है।

अब ठीक दोपहर के 1 बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के छत्रपति संभाजी नगर से मराठी समाचार, तो बने रहो 107.1 पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: मराठी समाचारों के बाद आप फिर एक बार जुड़े हो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। मैं हूँ रोशनी और शुरू हो गया है कार्यक्रम हिट एंड हॉट।

गुमनाम फिल्म का टाइटल ट्रैक। अमरावती से पंकज महौर जो सुन रहे हैं, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की थी। अगर आप आज का कार्यक्रम शुरुआत से सुन रहे हो तो म्यूजिक कैफे कार्यक्रम में ही इशारा दिया गया था कि आज हिट एंड हॉट में हम वही सारी फिल्मों के गाने साथ मिलकर सुनेंगे, ऐसी फिल्में जिस पर उनकी थीम रही है हॉरर, सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर, ये सारी फिल्में जो है और उनके गाने जो है आज उनका जो है लुत्फ़ उठाया जाएगा हिट एंड हॉट कार्यक्रम में। और जब ये बात कही गई, अमित भगत और प्रकाश शिंदे दोनों ने राज फिल्म के गाने की फरमाइश की है आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

You're back on 107.1 FM Rainbow. मैं हूँ रोशनी. कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट. और अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है और सोच रहे हो शुक्रवार का दिन है, कुछ मज़ेदार सा सुनेंगे FM Rainbow पर, लेकिन आज का जो मूड है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज फन फ्राइडे, फैंटास्टिक फ्राइडे के साथ फिल्मी फ्राइडे भी है. और फिल्में हम हर तरह की पसंद करते हैं, कभी रोम कॉम, कभी कॉमेडीज, कभी कभी पूरी मसाला बॉलीवुड फिल्मों का भी मज़ा हम लेना चाहते हैं. तो कई बार जो थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर मूवीज़ होते हैं उसका भी बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है. और इस शुक्रवार सोचा क्यों ना उन्हीं सारी फिल्मों को याद करें और उन्हीं फिल्मों के गानों का जो है मज़ा लिया जाए. और कई बार ऐसे देखा ही है कि ये जो फिल्में हैं सभी ने देखी है, या पूरी देखने के पहले ही वो इतना डर गए हैं कि आधी अधूरी फिल्म ही उन्हें अच्छे से याद है. लेकिन अगर इन फिल्मों के गानों की बात करें वो आज भी सुपर हिट है. उन्हीं में से एक गाना शुभदा ने इस गाने की फरमाइश की है कृष्णा कॉटेज फिल्म से, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़ श्रेया घोषाल की.

मराठी समाचारों के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हिट एंड हॉट कार्यक्रम चल रहा है, रोशनी आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई है। और आज जब हम हिट एंड हॉट में ऐसे गाने सुन रहे हैं जो सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर फिल्म से जुड़े हुए हैं, तब वही सारी फिल्में जो है याद आ रही हैं। और ये जो फिल्में देखने का मज़ा सबसे ज़्यादा थिएटर में ही आता है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि पूरा पूरा माहौल उसी तरह होता है कि हम फिल्म में अपने आप डूब जाए। या फिर कई बार ये माहौल हम घर पर भी बना सकते हैं, ख़ास तौर पर जितने भी 80s और 90s किड्स अभी हमें सुन रहे हैं, ये उस बात से ज़रूर मानेंगे, मानो दोपहर का वक्त है, घर में कोई भी बड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्में देखने से घर के बड़े ज़्यादातर मना करते थे। इसलिए सारे आस पड़ोस के बच्चे, कजिन्स सब मिलकर ये प्लान बनाते थे दोपहर के वक्त में, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर, पर्दे बनकर पूरा अंधेरा बनाया करते थे घर में, और फिर ऐसी फिल्में जो है प्ले किया करते थे। और फिर फिल्म में वाकई देखते हुए डर लगे या लगे, लेकिन ऐसी कुछ आवाज़ें आसपास सुनाई देती थी, ये अपने आप डर लगने लगता था। और वही जो सारा माहौल है वो आज तक हम भुलाए नहीं भूले हैं। FM रेनबो पर वक्त हुआ है बैक टू बैक दो गानों का, 1920 लंदन फिल्म से गाना, और उसके बाद हम सुनेंगे भूत फिल्म का टाइटल ट्रैक।

शुक्रवार की दोपहर, मूड काफ़ी रिलैक्स्ड कैजुअल सा है, काम भी अच्छे से चल रहा है, और काम करते हुए आने वाले वीकेंड पर क्या करेंगे, किस तरह एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ये सारी बातें सोच रहे हैं। ऐसे में आज के हिट एंड हॉट कार्यक्रम में हॉरर थ्रिलर फिल्मों के जो गाने हमने सुने हैं,

रखें। जहां भूत प्रकट होता भगवान वहां खुद ब खुद याद आने लगते हैं। भगवान कितना याद किया जाएगा ये भूत के तांडव पर भी निर्भर होता है। जितना विशाल भूत उतनी मात्रा में भगवान। यानी अगर हम सोच रहे हैं कि एक घंटे बस हमने ऐसे गाने सुने जहां पर हमें सिर्फ हॉरर और काफ़ी डरावनी चीज़ें याद आई, ऐसा नहीं। जब भी ये सब कुछ आता है अपने आप, उससे कई ज़्यादा मात्रा में हम भगवान को याद करते हैं। और जब उन्हें याद करते हैं वो हमारे लिए ज़रूर आसपास आ ही जाते हैं। तो आज बस यही हुआ है, भगवान को हमने एक अलग अंदाज में उन्हें याद कर लिया। इसी नोट पर रोशनी आज आपको टाटा गुड बाय कह रही है। गाने तो हम ज़रूर सुनेंगे और जो आखिरी गाने के साथ आज ऑन एयर झप्पी एक जादू भरी प्यार से जो है आपको काफ़ी लव ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। मिलूंगी बहुत जल्द ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल और अब दोपहर के ठीक 2 बजे हम सुनेंगे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार। बने रहो 107.1 MHz पर।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in

0: के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
4: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से

0: मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गरीब। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत। आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे। आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा। अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा।
1: हेलो, गुड इवनिंग। एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी उर्वशी को। शाम का समय हो गया है और समय हो गया है लव यू जिंदगी का। एफएम रेनबो पर आज के दिन में मैं आपसे बहुत सारी प्यार की, जिंदगी की और शेर व शायरी की बातें तो करूंगी ही, लेकिन साथ में साथ कुछ खूबसूरत गाने भी सुनाने वाली हूँ। ये जो आप प्रसारण सुन रहे हैं वो आप आकाशवाणी मुंबई केंद्र के मुंबई केंद्र से सुन रहे हैं और ये प्रसारण आप 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ कुछ खूबसूरत गानों के साथ।

एफएम रेनबो पर है आप मेरे यानी उर्वशी के साथ लव यू जिंदगी में। कुछ खूबसूरत गाने जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई एम श्योर आपको भी उतने ही पसंद आए होंगे ये गाने लव यू जिंदगी में। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ जो मेरे ही साथ हुआ था। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना कि जनरली जब मैं शो करने के लिए आती हूँ तो ट्रेन से आती हूँ, लोकल से। तो जब मैं आज आ रही थी तो ऐसे ही एक लड़की मेरे पास आकर बैठी लेडीज़ कोच में, और स्माइल एक्सचेंज हुई और फिर कुछ बात हुई। तो वो मुझे बता रही थी कि बारिश की वजह से उन लोगों की जो ऑफिस है वो एक रेस्टोरेंट जैसी जॉइंट में काम करती है कहीं, तो दादर के पास, तो वहाँ पे पानी भर गया था तो थोड़े दिन उनका ऑफिस बंद रहा। तो आज वो ऑफिस जा रही थी वापस, तो मैंने ऐसे ही क्यूरियोसिटी से पूछा वो क्या करती है। तो वहाँ पे वो खाना परोसने का काम करती है और ज़्यादा

तनख्वाह भी नहीं थी उसकी, लेकिन उसके चेहरे पर जो स्माइल थी फिर से काम पर जाने के लिए, फिर से ऑफिस जाने के लिए, वो आपको कभी कभी ना, आप जब कंप्लेन करते रहते हो ना कि ये काम है, मुझे इतने बजे निकल जाना पड़ता है, मैं लेट हो जाता हूँ या लेट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, तो ऐसे लोगों से मिलके आपको भी बोलने का मन करता है कि लव यू जिंदगी, वो आपको स्पिरिट से भर देते हैं। तो थैंक यू गर्ल ऑन अ ट्रेन, आपकी मुलाकात ने मुझे भी आज बहुत स्पिरिट दिया है। और आप सभी के पास भी अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे बताइए हमारे व्हाट्सएप पे, मैं डेफिनेटली अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी आप सुनेंगे एक खूबसूरत सा गाना ऑन FM रेनबो।

हेलो एफएम रेनबो पर मेरे यानी उर्वशी के साथ लव यू जिंदगी चल रहा है और मैंने पूछा था कि कैसी कुछ मूवमेंट्स होती है ना जो हमारे साथ रह जाती है। जैसे मैंने आज की अपनी ट्रेन की कहानी आपके साथ शेयर की और मुझे मेरे प्यारे लिसनर्स ने बहुत ही अच्छे फीडबैक भेजे हैं। प्रकाश शिंदे जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि काम चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर उसे ईमानदारी से करो, कड़ी मेहनत से करो तो कोई चीज़ कभी कम नहीं होती। और जैसे मैं जिस लड़की से मिली थी ट्रेन में, उन्होंने बताया था ना कि उनको ऑफिस उनका जो बंद था रेस्टोरेंट तो उनको बुरा लग रहा था। तो अंजू जी हैं अंधेरी से, वो रिटायर मेडिकल ऑफिसर हैं। वो बोलती है कि जब स्कूल में उनको छुट्टी मिल जाती थी बारिश की वजह से बचपन में, तो उनको बहुत बुरा लगता था, उनको स्कूल जाना बहुत ही पसंद था। तो सब बोलते हैं ना कि स्कूल में छुट्टी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब छोटे थे तो हमको भी ऐसा लगता था कि हाय आज स्कूल नहीं जाना है, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चलता है कि वो जो दिन थे, वो जो टाइम था, वो बेस्ट टाइम था। स्कूल में जाना एक तरीके से तो हमारे लिए हॉलीडे ही होता था, घर से दूर फ्रेंड्स के साथ, आहा, तब होती थी एक्चुअली लव यू जिंदगी वाली फीलिंग। और इसी के साथ, इस गाने के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ।

FM रेनबो पर आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लेकिन लव यू जिंदगी को ख़त्म करने का वक्त अब आ चुका है, 6 बजने वाले हैं स्टूडियो की क्लॉक में, और ये इशारा करता है कि लव यू जिंदगी बस अब ख़त्म हुआ। लेकिन मैं उर्वशी आपके साथ यहीं पे हूँ स्टूडियो में, मैं आपसे बातें करती रहूँगी। थोड़ी ही देर में 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी हमारे बहुत ही पसंदीदा शो जिसका नाम है अंदाज़े बयां। उसमें कुछ सुंदर सी गज़लें मैं आपको सुनाऊँगी, कुछ खूबसूरत से शेर आपके साथ मैं शेयर करने का आज मन रखती हूँ, तो डेफिनेटली वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, उसके बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद अंदाज़े बयां।

अभी कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र पर प्रादेशिक समाचार सुनने वाले हैं, उसके बाद मैं उर्वशी आपको मिलूंगी हमारे शो अंदाजे बयां के साथ। इसी के साथ लव यू जिंदगी यहीं पर ख़त्म होता है। थोड़ी ही देर में मैंने पहले ही बताया कि अंदाजे बयां के साथ मैं आपको मिलूंगी, उससे पहले आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे हमारे साथ।

अंदाज़े बयां में मैं उर्वशी आपके साथ एफएम रेनबो पर। बारिश आई और पता नहीं फिर कहाँ खो गई, है ना। तो बारिश को याद करते हुए कुछ एक शेर मैं आपके लिए आज खास लेके आई हूँ, और जो लोग बॉम्बे के बाहर से सुन रहे हैं वो तो प्लीज़ मुझे बताएं मैसेज करके कि क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो आके चली गई है। एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है जमाल एहसानी का कि तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। बस कुछ गाने, कुछ शेर और बहुत सारा प्यार। मैं हूं उर्वशी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: करी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत। आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे। आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा। अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा।
1: अंदाजे बयां सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ। मैं पूछ रही थी कि जो लोग बॉम्बे से मुझे नहीं सुन रहे हैं वो खास मुझे बताएं कि क्या आपके यहाँ पे बारिश हुई है। कुछ कुछ लोगों ने बताया है कि हाँ अहमदाबाद में थोड़ी बारिश हुई है, नॉर्थ के कुछ कुछ स्टेट्स में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन बॉम्बे में जो शुरुआत वाली बारिश हुई उसके बाद थोड़ा सा हमारा सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन आई होप कि वीकेंड में थोड़ी बारिश आ जाए। तो चलिए बारिश को कुछ शेर सुनाते हैं, शायद उसका मन हो जाए। तो जमाल एहसानी का ही दूसरा एक बहुत खूबसूरत शेर है कि उसने बारिश में खिड़की खोल के देखा नहीं, उसने बारिश में खिड़की खोल के देखा नहीं, भीगने वालों को कल क्या क्या परेशानी हुई। पर मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, खूबसूरत गाने और शेर के साथ मैं मिलती हूँ इस गाने के उस पार।

अंदाज़े बयां में बावरे मन के सपने देखने का वक्त अब खत्म होता है। थोड़ी ही देर में 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी हम तुम में। हम तुम में क्या करना है आप सभी जानते ही हैं। आपकी पसंद के, आपकी फरमाइश के गाने मैं प्ले करूंगी। आप मुझे 8657661071 पे अपने जो पसंद के गाने हैं वो मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि वो सभी गाने मैं अपने शो में शामिल कर सकूं, लेकिन उससे पहले प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और उसके बाद मिलेंगे हम तुम में।

7:10 और हम तुम का समय हो गया है आप सभी का सबसे फेवरेट शो, क्योंकि आपकी फरमाइश के गाने इसमें हम बजाते हैं। शुरुआत करते हैं दो गानों के साथ, दोनों जो मुझे व्हाट्सएप में आए हैं। अगर आपने अभी तक अपना फेवरेट गाना नहीं भेजा है मुझे तो अभी भेजिए, 8657661071 है हमारा नंबर, अपनी फरमाइश का गाना, और हो सके ना तो कुछ दो चार ऑप्शन ज़रूर भेजिए, क्योंकि कभी कभी एक गाना आप भेजते हो शायद वो गाना नहीं होता, या यू नो थोड़ी देर पहले ही बजा है तो फिर वो गाना शायद मैं ना बजा पाऊँ, तो इससे बेटर है ना कि आप मुझे ऑप्शंस दे दीजिए। अभी जो दो गाने हम सुनने वाले हैं, एक है वैदेही जो शुरू से हमारे साथ बनी हुई है, और उन्होंने गानों की जो प्लेलिस्ट थी आज की उसके बारे में भी बात की, तारीफ की। उनको सुनना है ताल फिल्म का गाना नहीं सामने, और योगेश जी भांडुप से हमें मैसेज कर रहे हैं और उनको तेरे नाम फिल्म का कोई भी एक गाना सुनना है। तो अभी के लिए इन दोनों की फरमाइश के साथ हम तुम की शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जितने भी लिसनर्स हैं बाकी उन सब की फरमाइश के गाने भी हम एक के बाद एक बजाएंगे।

हम तुम सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ, और अभी आपकी पसंद के ही गाने हम बजा रहे हैं। और बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही है कि हमारे भी गाने बजाइए, हमारे भी नाम लीजिए। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जाते जाते एक बार सबके नाम तो ले ही लूँ, जितने हो सके उतने गाने भी मैं आपके लिए प्ले करूँ। लेकिन अभी जो एक गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है दीपा पालकर जी की फरमाइश पे, दिल्ली 6 का गाना है अर्जिया सारी। तो दीपा जी की फरमाइश तो अभी मैं पूरी कर रही हूँ, और उसके बाद ठीक 7:30 बजे आप जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 है उसका डेली अपडेट सुनेंगे ओनली ऑन रेडियो सेट्स पर। और उसके बाद फिर से मैं हम तुम में आपको मिलूंगी। आप मुझे मैसेज करना बिल्कुल बंद मत कीजिए, जितनी भी हो सकती है उतनी फरमाइश मैं आपकी पूरी करती रहूँगी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी FM रेनबो।
4: FM रेनबो पे हम तुम चल रहा है और हम सुन रहे हैं आपकी पसंद के गाने। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं। अब सबके गाने तो बजाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं सोचती हूँ कि सबके जो गाने हैं वो ना बजाऊँ तो कोई नहीं, लेकिन सबका नाम एक एक बार ले लेते हैं। ममता जायसवाल जी हैं हमारे साथ, उनकी भी फरमाइश है, हम कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया है कि आई लव योर शो। थैंक यू ममता जी। मुकेश कश्यप जी हैं जो जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से, उत्तर प्रदेश से हमें सुनते हैं, और उनके साथ मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्मी, मोहिनी, बलवीर जी सभी ये गाना सुनते हैं और ये बहुत ही अच्छे लिसनर्स। उनका है कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर दीजिएगा। जी जी, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। फिरोज सिंहपुरिया, विजेंद्र घटोला अकोल से, विजेंद्र जी भी हमारे साथ 5 बजे से बने हुए हैं और वो हमारे काफ़ी रेगुलर लिसनर हैं। शिवनाथ जकारे, प्रकाश शिंदे, वो भी हमारे काफ़ी रेगुलर लिसनर, नूतन बर्वे, सुशील यादव, रेनु यादव, संजय दर्शन, दत्ता केदार पंडरपुर से, प्रणव शिंदे, बलकरण वर्मा, हरजिंदर छिज्जा, जसवीर, बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ हैं। कोशिश करते हैं कि सबके नाम लिए जाएं और सबके गाने भी प्ले कर सकूं मैं। अभी मैं जो गाना प्ले करने वाली हूं वो आदर्श कनौजिया की रिक्वेस्ट पे वीर जारा फिल्म का ये गाना है तेरे लिए, और उसके बाद मिलते हैं कुछ और फरमाइश के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: हम तुम सुन रहे हैं आप मेरे यानी उर्वशी के साथ आपकी पसंद के गाने और उसका सिलसिला मेरे साथ चल रहा है. अभी आपने जो सुना था थोड़ी देर पहले गाना सजदे किए हैं लाखों दुआएं मांगी, वो राकेश माथुर जी की फरमाइश का गाना था खट्टा मीठा फिल्म से. अभी बहुत सारी फरमाइश हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वक्त जो है बस घड़ी में दिखा रहा है कि 10 मिनट में तो मुझे आपसे विदा लेनी पड़ेगी, मतलब घर जाना पड़ेगा ऑफकोर्स. तो बुरा मत मानिएगा अगर किसी का गाना रह जाए, छूट जाए, क्योंकि नहीं पॉसिबल हो पाता है आपके इतने सारे गानों को एक ही घंटे में समाना. एक घंटे से भी कम वक्त मिलता है मुझे, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार जब आऊं तो जो नाराज़ है उनके चेहरे पर फिर से एक बार स्माइल लेके आऊं. अभी मैं कुछ गानों के साथ ही आपकी विदा लेना चाहूंगी. अगली बार जब तक मुलाकात होती है तब तक के लिए मुझे यानी उर्वशी को याद रखिएगा. अभी नूतन बर्वे जी की एक फरमाइश है, ज़रा ज़रा फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में, और उसके बाद मैं देखूंगी कि किसकी फरमाइश का गाना मैं बजा सकती हूँ. जिसका भी बजे वो खुश होना, और बाकी लोग नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा वेट करना. मैं पक्का आपकी पसंद के गाने बजाऊंगी. अभी के लिए मुझे विदा कीजिए और मिलते हैं फिर एक बार नए शो में नई बातों के साथ.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: प्ले मी अ सॉन्ग, आई वोंट सिंग इट आउट रॉन्ग।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना

0: ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
2: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित तीन लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की

0: ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन के खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index.

ब्रैडली कूपर एंड लेडी गागा देयर विद शैलो एंड दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग ट्रैक वॉज रिक्वेस्टेड बाय जूली. अप नेक्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द बी जीज कमिंग इन विथ नाइट फीवर. दिस वन बीन रिक्वेस्टेड बाय नाइजल. 107.1 हैव फन. स्टे ट्यून इन एंड स्टे इन ट्यून.

0: Muhammad Zubair. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए,

0: स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रंग महफिल में हैं आप विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, एक शायर ने क्या खूब कहा है, नजर बदले तो मौसम भी बदल जाते हैं, वरना चांद तो हर रात यही निकलता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस एहसास की तरफ जहां मोहब्बत दिल में तो रहती है मगर जुबान तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि कुछ रिश्ते ना खामोशियों में ही मुकम्मल होते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना भी होता है, लेकिन अल्फाज ही साथ नहीं देते।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंग महफिल में। दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में हर कहानी एक जैसी नहीं होती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर सच को बयां करना जरूरी तो नहीं, कुछ दर्द मुस्कुराकर भी जी लिए जाते हैं। तो लीजिए, इसी बात पर अब पेश है पंकज उदास की खूबसूरत आवाज में एक ऐसी गजल जो रिश्तों की सच्चाइयों को बहुत ही सलीके से बयां करती है।

क्या बात है, ये अलग बात है साकी। वैसे दोस्तों, जिंदगी में कई बार हालात और दिल की ख्वाहिशें एक दूसरे से मेल नहीं खाते। फासले सिर्फ रास्तों में ही नहीं होते, कभी कभी आपको लगा ऐसा कि एक मुस्कान भी बहुत दूर होती है। अपने अपने दिल के हालात हैं, कभी कुछ महसूस होता है और कभी कुछ महसूस होना ही बंद हो जाता है। चलिए, इसी बात पे पेश की खिदमत है वो गजल जो यादों और संगीत का एक ऐसा संगम है जिसे सुनकर बीते लम्हे फिर से दस्तक देने लगते हैं। बताइए आपको कैसी लगी।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल अपनी दोस्त विनीता बेदी के साथ। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे कई दोस्त हैं जो हमारी महफिल में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से, हमारे साथ सुदर्शन मुखी भी हैं और अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। ऑस्ट्रेलिया से जोया मेलबोर्ने भी जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। गोवा से हमारे साथ हैं, सॉरी आपका नाम पर तो ज़रूर दूंगी, एक बार बस मिल जाए ओके, नवलू वरक फ्रॉम गांव मलपण जिला उत्तर गोवा से आप हमारे साथ हैं। और अनूप जलोटा की गज़ल को आपने बहुत पसंद किया है। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ फारूक अली खां, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा हैं। तो आप सभी न सिर्फ इन गज़लों को सराह रहे हैं बल्कि इस वक्त आप जो अपने बहुत मोहब्बत से संदेश भेज रहे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमारे साथ इस कार्यक्रम में आ जाएं। और एक और हमारे साथी जो हमारे साथ हैं वो हैं मोहम्मद सरफराज आलम जौकीहाट दर्शना बाज़ार जिला अररिया बिहार से। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी यादों की बरसात आती है आप लोगों का नाम सबसे पहले नज़र आता है। और जब बात की है यादों की तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यादें भी ना बड़ी अजीब होती हैं, पर कुछ नगमे जो होते हैं वो उम्र भर साथ चलते हैं क्योंकि उनमें किसी अपने की खुशबू बसती है। यादें ये आप सभी के लिए दोस्तों, यादें जो हैं ये कभी भी शोर नहीं करती और इंतज़ार कभी शिकायत नहीं करता, बस खामोशी से उम्र भर साथ चलता है। तो चलिए गज़ल की दुनिया के बादशाह जगजीत सिंह की आवाज़ में सुनिए रंगे महफिल की ये अगली पेशकश। भाई मुझे तो जगजीत सिंह बहुत ही पसंद है और उनकी आवाज़ का जो मखमली अंदाज है ना वो दिल को छू लेने वाला है। आप बताएंगे आपको कौन पसंद है गजल गायकी में।

शफक कहते हैं किरणों को, रेस और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है, शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली

जगजीत सिंह की आवाज ना दोस्तों हमेशा दिल के सबसे खामोश कोनों को छू जाती है, है ना। और एक जो बात मन में उभर कर आती है वो ये कि अगर इंतजार मोहब्बत से हो तो हर गुजरता लम्हा भी इबादत बन जाता है, है ना। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में तुम्पा पॉल हैं रेलवे कॉलोनी एमके रोड न्यू दिल्ली से, और साथ के साथ गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेडावन गांव से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी, और साथ में संदेश भेजकर ये बताने के लिए भी कि आप हमारे साथ हैं हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो सो अगली गजल, इनफैक्ट इस प्रोग्राम की आखिरी गजल, रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती बताती है, और सबसे बड़ी खूबसूरती रिश्तों की है यही कि वह हर मुश्किल सफर को आसान बना देते हैं। सफर चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, अगर दोस्तों का साथ हो ना तो हर मंजिल बहुत सुहानी लगने शुरू हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि साथ चलने वाला कोई अपना होना चाहिए, है ना। तो अब आज की महफिल की आखिरी पेशकश, क्योंकि मोहब्बत में कई बार फैसले दिल करता है और कई बार वक्त। आपकी जिंदगी का फैसला कौन करता है कभी बताइएगा जरूर। लेकिन हरिहरन की इस गजल के साथ आपको छोड़े जा रही हूं, ये कहते हुए कि आज की रंगे महफिल यहीं सिमटती है। रुखसत होने से पहले एक शेर जरूर अर्ज करूंगी कि महफिलें खत्म नहीं होती, बस लोग उठ जाते हैं। दोस्तों महफिलें खत्म नहीं होती, बस लोग उठ जाते हैं। यादों के चराग फिर भी देर तक जलते रहते हैं। मैं विनीता बेदी अब चाहूंगी आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी गजलों और जज्बातों की एक नई महफिल में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि फिर से वही बात दोहराऊंगी कि जब मोहब्बत होती है ना, वो भी सच्ची वाली, तो कई फैसले दिल करता है और सही फैसले ही करता है, लेकिन कई फैसले वक्त करता है। तो इसी वक्त की नजाकत को भी समझें और इसकी मोहब्बत को भी। चलती हूँ, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर।

12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने स्पाइसजेट लिमिटेड पर अपने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन पद्धतियों के लिए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 55 किलोग्राम भार वर्ग में हंसिका लांबा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता।

12:02 और 37 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सब चोर हैं फिल्म के इस गीत के साथ, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं रंग फिल्म का गीत, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की।

कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। एक इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की आवाजों में फिल्म अनजाने का ये खूबसूरत सा गीत।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जमीन फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं आवाज़ें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की।

दोस्तों आप सुन रहे हैं जीरो आर शो, मेरे यानी अर्चना बिजारिया के साथ। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अनकही का ये गीत, जिसे गाया है के ने।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आयुष्मान खुराना की आवाज में ये आप सुनते हैं आर्टिकल 15 का ये गीत।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
1: जीरो आर शो में आइए अब आपको सुनवाते हैं तारा रमपम फिल्म का गीत, जिसे गाया है शान और सुनिधि चौहान ने।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जमाने को दिखाना है, आइए सुनते हैं सुन का गीत जिसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

डॉक्टर मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात। इसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक और मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल है। 2 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत जापान के बीच चल रही बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से लंबी 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में चुनाव संविधान, चुनावी कानूनों और समय समय पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला।

0: आकाशवाणी।
1: 2:48 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने, नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के

ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत जापान के बीच चल रही बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर देर रात सिलीगुड़ी पहुंचे। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से लंबी 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 4 चीनी खिलाड़ी चेन युफेई से होगा।

0: आकाशवाणी
1: 3:02 और 45 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मिडनाइट मेलोडीज नॉनस्टॉप।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा।

बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। गजा में इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 22 अन्य घायल हो गए। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। कुश्ती में पूर्व अंडर 17 विश्व चैंपियन नेहा ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिला वर्ग के 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी ने, रजत और सविता ने कांस्य पदक जीता। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।